0: Major Harshit Sharma, Trisha Sharma's brother, performed her last rites in Bhopal.
1: लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने मामले को
2: लड़ाई सर मैंने अकेले नहीं लड़ी है मैं इस आप सबने लड़ी ये लड़ाई ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया ने लड़ी ये लड़ाई और इस आम जनता ने लड़ाई लड़ी है जो हमारे साथ खड़ी होकर के लड़ी है सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने सीबीआई को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा
0: As the flames rose at the cremation ground, the battle shifted instantly from Bhopal to New Delhi. Trisha has been laid to rest, but the war for her justice has exploded. The Supreme Court of India has taken suo motu cognizance, intervening directly after a damning note to the Chief Justice exposed an alleged institutional cover-up driven by deep judicial influence of her in-laws. Trisha Sharma's husband Samarth Singh is locked in a 7-day police remand. His passport seized. With the CBI taking charge and the Supreme Court hearing the case, Trisha's body is at peace, but the nation will not rest until the truth is laid bare. Trisha Sharma is finally at peace, but the storm she left behind has only just begun. With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.
3: On that very note, viewers, we are wrapping up this hour's bulletin right here. But do stay tuned to India Today for all the latest updates and top stories. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
4: You are watching India Today.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.

0: has to say should be recorded in front of a legal agency. In fact, the other side was also requested by the Supreme Court, both sides in fact, and even the media, that these statements should not be made in public. It's part, these statements are part of a criminal investigation. So instead of going to the media to make their statements, they should go to the agencies and get their statements recorded. The court also requested the media to be a little careful while covering this case and asked the media to not put forth statements by the family members, because like I said, they're all part of a criminal investigation. The Solicitor General has assured the court today. The court has asked that if CBI has to take over the probe, it would be good if an impartial, independent independent investigating agency takes over this probe instead of the police, because some apprehensions have been expressed by the family members of the deceased, even though they're not questioning the fairness of the state police, since an apprehension has been raised. And now, in fact, a narrative has been created across the country where there are concerns about whether or not the investigation would be impartial, whether or not the investigation would be fair. It's good if an independent investigating agency comes in and investigates, because it's an unfortunate incident of a death of a young woman, and the agency needs to make sure that a fair and impartial investigation is conducted. Time and again, multiple times, we saw the statement coming from the Chief Justice of India himself, where he said that their only concern is that the probe should be fair and impartial. They have not expressed any opinion on the merits of the case or the allegations involved. All they have done is said that a CBI should take over the investigation, considering CBI, the state has already proposed to transfer the probe. We saw the SG also tell court that he will speak to the CBI director and ensure that the probe is taken over by the CBI and it's expedited, and all this happens as soon as possible. So this is what we saw happen before the Supreme Court. We also saw some statements made by the Solicitor General, where he questioned the mother-in-law of the deceased for making the statements that she's been making, where he also said that as far as the families are concerned, a divorced daughter would be better than a dead daughter. He
1: highlighted that. It's an important observation made by the court that, you know, a dead daughter is no... In fact, a divorced daughter is certainly better than a dead daughter. This is something that we've said throughout, even during the course of our coverage, isn't it? Something that has been reiterated so often. Also, Ravish, coming to you about what has been said to the families, both sides, is that avoid making statements. Do not make statements that would influence the probe. And this is something that both sides have to adhere to, is what the court has essentially said. By both sides, I mean both families.
2: बिल्कुल इसी पे अब आज देखने वाली बात होगी कि त्रिशा की फैमिली जो लगातार इतने दिनों से स्टेटमेंट्स मीडिया में आके दे रही थी, अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद वो क्या करती है, क्योंकि फैमिली आज भी भोपाल में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेस बाकी है त्रिशा के लेकर के, उसके बाद फैमिली यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा है कि जिस तरीके से दोनों साइड्स की तरफ से स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, कम से कम उसमें जो है अब उनको ध्यान देना होगा, स्टेटमेंट्स मीडिया को नहीं देने हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे उनको सपोर्ट करना है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो सही तरीके से अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है अभी तक, और इन फ्यूचर जब सीबीआई टेक ओवर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी भरोसा जताया है। लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े हैं, जिसको लेकर के आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी हियरिंग होनी है, खासतौर से जो गिरिबाला सिंह है उनकी बेल एप्लीकेशन को लेकर के। तो यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक बड़ा असर, जब हाईकोर्ट में आज हियरिंग होगी गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करने को लेकर के, तो शायद उस पर भी पड़ सकता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर में जाता दिख रहा है गिरिबाला सिंह के, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन सबसे ज्यादा लग रहे थे कि वो इन्फ्लुएंशियल है काफी और इस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने आज जिस तरीके से एपेक्स कोर्ट ने ये बात कही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर गया होगा कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं विक्टिम फैमिली की तरफ से गिरिबाला सिंह पर, उनके इन्फ्लुएंशियल होने पर, तो वो कहीं ना कहीं उस बात से सुप्रीम कोर्ट डिफर करता है। और सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो दोनों साइड्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को लॉ के हिसाब से कंप्लीट होने देना चाहिए।
1: बने रहिए हमारे साथ में. दैट्स रवीश गेटिंग इन ऑल ऑफ दोज डिटेल्स विद द कोर्ट टुडे सेइंग दैट बोथ साइड्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट्स. सृष्टि कंटिन्यूज टू बी विद अस एंड आई एम गोइंग टू आस्क टू गेट अस द वेरी लेटेस्ट एज फार एज सृष्टि द हियरिंग इज कंसर्न्ड. अनिशा माथुर ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द फैक्ट दैट तुषार

0: are watching India Today.
1: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
4: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: दो रुपए का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और चंडीगढ़ के हम एक फ्यूल स्टेशन पर हैं जहां पर अब रेट पेट्रोल डीजल का जो प्राइस था वो भी 100 के पार हो गया है। अब चंडीगढ़ के अंदर जो 97-98 रुपए पेट्रोल था वो 101 रुपए हो गया और डीजल की कीमतें लगभग 79-90 रुपए के आसपास है। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे अब इस पर?
11: हमारे लिए महंगाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं होता है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे इसलिए, और मजबूरियां पड़वाना तो पड़ेगी, डलवाना तो पड़ता ही है, क्या करें अब, गरीब बंदा क्या करेगा।
10: अब देखिए कि जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उनका सीधा असर लोगों की ये कहना है कि अपील भी है, कहना भी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए और उनके क्योंकि आवाजाही पर इसका सीधा असर है। और सर पेट्रोल के फिर प्राइस बढ़े हैं?
12: हाँ जी, तो बढ़ रहे, रोज ही बढ़ रहे हैं, अब क्या होता है, अब महंगाई तो बढ़ी रही
10: आपको फिर भी, लेकिन
12: अब तो लेना तो पड़ेगा, आना जाना तो है ही, काम तो करना ही पड़ेगा ना जी, तो यहाँ
10: तो आप देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 101 रुपए पेट्रोल, 101 रुपए 54 पैसे और 89 रुपीज डीजल चंडीगढ़ के अंदर हुआ।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: So sorry.
4: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन न शादी में कंगन का मेंशन अब ना त्योहार पर हार का टेंशन न शादी में कंगन का मेंशन पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस
5: इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल हो गया है मुश्किल
6: थैंक यू मोदी जी
7: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: sorry.
1: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
2: सुनो सुनो सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
1: थैंक यू मोदी जी।
3: सुनिए सुनिए,
4: को पावर्ड बाय द न्यू टाइगन, वेलकम टू ड्राइविंग।

0: Want to work in AI, software, or systems design? WGU's computer science degree teaches the fundamentals behind it all, plus the real-world skills to build what's next. Get started at wgu.edu.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Oh, sorry.
3: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। सुनिए, अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
4: सुनो सुनो सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
5: थैंक यू मोदी जी।
6: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove Station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: have. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Van Holt, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: काम करना सरकार नहीं है आज आज का परिस्थिति बहुत बहुत परेशान है लोगों में परेशान में है बस गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द इश्यू दे आर कंप्लीटली सिटिंग ऑन माय प्राइम मिनिस्टर टूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी डे पेट्रोल डीजल प्राइस इज इंक्रीजिंग पीपल आर इन अ वेरी वेरी बिग डिफिकल्टीज अनएम्प्लॉयमेंट इज इन अ पीक आवर यूथ आर नॉट गेटिंग एनी जॉब Then they are also getting...
7: अमेरिका ईरान का युद्ध है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है जब चुनाव चल रहे थे पांच राज्यों में तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं आज फिर बढ़ोतरी करी है तो ये जो जनता पे बोझ डालना था अगर पहले पटाखे करते तो क्या दिक्कत आती लेकिन चुनाव के समय भाषण देना अब कह रहे हैं कि बचत करनी है खाने के तेल में कमी करनी है सोना नहीं खरीदना और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो महंगाई पर सरकार को कोई

डॉलर पर बैरल में मिल रहा था क्राइसिस से पहले, दैट इंक्रीज्ड टू, आई मीन द फ्लक्चुएशंस वर एज हाई एज मोर देन 120 डॉलर्स पर बैरल. अभी भी इट इज मोर देन 100, मे बी 106 और सो. ग्लोबली जो भी प्राइस का इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया में हर देश पर है लगभग. अगर ग्लोबल आप प्राइजेस का इंक्रीज देखें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 22% फॉर एमएस एंड 27% फॉर एचएसडी. लेकिन अगर यही हाइक आप हमारे अपने देश के लिए देखें तो इट इज मच लेस. एमएस के लिए इट इज 7.7 एंड 8.6 फॉर एचएसडी. लेकिन ये इंक्रीज करने से पहले भारत सरकार ने अपने स्तर पर जो कुछ भी कदम लिए जाने संभव थे उन्होंने लिए. आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 10 रूपये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 10 रूपये एक्साइज ड्यूटी डीजल पर कम किया. इस कमी का, ये जो कम किया, इसका जो अगर इसको हम रूपी टर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो लगभग 14,000 करोड़ का टैक्स है जो सरकार ने अब कलेक्ट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी. इन सबको स्टेप्स लेने के बाद भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था. जैसा हमने आपको बताया वो लगभग 1,000 करोड़ प्रतिदिन का था. अब प्राइस राइज के बाद वो घाटा कम हुआ है, बट इट इज स्टिल इन स्लाइटली लेस देन 600 करोड़.

0: काम करना सरकार नहीं है। आज का परिस्थिति बहुत बहुत परेशान है, लोगों में परेशान में है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द इश्यू। दे आर कंप्लीटली सिटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर इज टूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी डे पेट्रोल डीजल प्राइस इज इंक्रीजिंग। पीपल आर इन ए वेरी वेरी बिग डिफिकल्टीज। अनएम्प्लॉयमेंट इज इन ए पीक। आवर यूथ आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। Then they are also getting...
1: अमेरिका ईरान का युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे पांच राज्यों में, तब तो सरकार ने इसके भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले बता के करते तो क्या दिक्कत आती, लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, तो महंगाई पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है।